0: ऐसा नहीं है कि उसमें उन्होंने कोई यूनिक चीज नहीं की हो। हर गाने में कोई ना कोई नई चीज जरूर होती है। कोई भी गाना आप नहीं कह सकते कि यार इसमें कोई खास बात नहीं। हर गाना रहमान सर का, मगर एक बात है, ही नेवर लाइज। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज क्वालिटी अबाउट यार रहमान। वो कभी ना जो भी कुछ कहते हैं ना वो सच में कहते हैं, वो सच ही होता है उनके लिए। उस जेन्युइननेस की वजह से भी कुछ शायद ऐसा होता है कि कभी वो बगैर जेन्युइनिटी के कोई काम नहीं करते, तो शायद वो चीज भी ट्रांसलेट जरूर होती ही होगी।
1: That line hit me hard. कि रहमान साहब कभी झूठ नहीं बोलते। Maybe इसलिए उनका म्यूजिक हर किसी को instantly समझ नहीं आता। सच को प्रोसेस करने में थोड़ा वक्त लगता है। और आयरनी ये है, इसी काउंटडाउन पे धुरंधर का मैं और तू गाना है, which is on number 9. It's got an easy vibe, it's energetic, it's instantly catchy. And फिर number 8 पर है व्याह करवा दो जी, मिक्का सिंह और आशीष कौर की आवाज में। फुल एनर्जी, फुल शादी वाला मोड। क्या लोग नाचेंगे? 100%। लेकिन क्या 3 महीने बाद ये गाना याद रहेगा? I don't think so. और वही डिफरेंस होता है पॉपुलर म्यूजिक और टाइमलेस म्यूजिक में। गाना नंबर 8 इस हफ्ते, ब्याह करवा दो जी, प्रभ है जवानी तो इश्क होना है।
2: नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 7

सैयारा इज वन ऑफ द हाईएस्ट वॉच मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स और इसी हफ्ते मैंने नेटफ्लिक्स पे एक और फिल्म देखी कर्तव्य एंड आई जेन्युइनली डिड नॉट एक्सपेक्ट इट। सैफ अली खान इस फिल्म में आउटस्टैंडिंग है यार। सच ये है कि बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स हैं जिनको देख के लगता है कि शायद इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऑटो तक नहीं लिया होगा, और फिर वही बंदा जब एक देसी यूपी बिहार का पुलिस वाला बनके स्क्रीन पे आता है और आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका ठहराव, उसकी आंखों की थकान बिलीव कर लेते हो ना, वो होती है एक्टिंग। और सैफ ने ये बार बार किया है। ओमकारा हो गई, लाल कप्तान, बीइंग साइरस, बंदा रिस्क लेता है और फेल भी होता है कभी कभी, लेकिन सैफ नेवर प्लेज इट सेफ। एंड सैफ के साथ है संजय मिश्रा। यार क्या एक्टर है, वो एक्टिंग कहां करते हैं एक्चुअली, वो तो बस हैं। ऐसे लोग परफॉर्म नहीं करते, वो हवा बदल देते हैं। एंड फिर इस पिक्चर में देखे सौरभ द्विवेदी, वही अपने लल्लन टॉप वाले, और इंटरनेट ने भाई साहब उन्हें ऐसे तोड़ा है ना जैसे वाइवा लेने वाले प्रोफेसर को अचानक एनुअल डे पे नाचने के लिए बोल दिया हो। देखिए क्रिटिसिज्म देना आसान है, इनफैक्ट बहुत आसान, हम सब करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन फिर खुद कैमरा के सामने आके ऐसे परफॉर्म करना जैसे स्कूल असेंबली में लास्ट मिनट पे किसी बच्चे को रोल करने के लिए बोल दिया हो, वो डेंजरस गेम है। सोशल मीडिया इसीलिए इतना रूथलेस है क्योंकि ऑडियंस हिपोक्रेसी को इंस्टेंटली पकड़ लेती है, और ये जरूरी भी था। फिल्म को क्रिटिसाइज करना और खुद एक्टिंग करने में वही डिफरेंस है जो एक पॉडकास्ट में बैठ के क्रिकेट के बारे में बात करना है और एक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की बाउंसर को फेस करना है। लेकिन यस, इन स्पाइट ऑफ सौरभ द्विवेदी, प्लीज वॉच दिस फिल्म कर्तव्य फॉर सैफ अली खान एंड संजय मिश्रा। इसी बहाने एक अच्छा गाना सुनाने का भी मौका मिल गया है। सैफ की एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसने जेन्युइनली ऑडियंस को शॉक किया। इट वाज कोल्ड, इट वाज मेनेसिंग, इट वाज अनप्रेडिक्टेबल। ये अब भी मेरी फेवरेट फिल्म है। ओमकारा से ये गाना है नमक, रेखा भारद्वाज जी की आवाज में। टॉप 20 रिवाइंड।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 5।

0: कभी कभी एक फिल्म खत्म होने के बाद भी वो खत्म नहीं होती। धुरंधर और धुरंधर 2 एग्जैक्टली वैसी ही फिल्म्स निकली। सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं, कल्चरल टेक ओवर किया, मीम्स आए, फैन एडिट्स आए, एक्शन सीन्स वायरल हुए। लेकिन सबसे डेंजरस चीज पता है क्या हुई? डायलॉग्स जो है वो हमारे दिलो दिमाग में घुस गए। और ऑनेस्टली बॉलीवुड को इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आजकल हम देखो फिल्म्स देखते तो बहुत हैं, लेकिन याद हमें बहुत कम रहती हैं। क्योंकि एक वक्त था जब हिंदी सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता था, रोजमर्रा की भाषा हुआ करती थी। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तुमसे ना हो पाएगा। ये लाइन से स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं थी, ये इंडिया का पॉप कल्चर सॉफ्टवेयर थी। लेकिन आज 1000 करोड़ की फिल्में आ रही हैं, लेकिन थिएटर से बाहर निकलते ही आधे से ज्यादा डायलॉग्स मेमोरी से लॉग आउट कर जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि या तो फिल्म्स रियलिज्म में इतनी धीमी हो गई हैं कि कोई लाइन हवा नहीं पकड़ती, या फिर हर दूसरा डायलॉग एक मास मोमेंट बनने की इतनी कोशिश करता है कि असली स्वैग गायब हो जाता है। आइकॉनिक डायलॉग्स लिखे नहीं जाते यार, वो फील होते हैं। और धुरंधर ने हमें याद दिलाया कि बॉलीवुड जब डायलॉग बाजी सही करता है ना, तो ऑडियंस सिर्फ तालियां नहीं बजाती, वो डायलॉग्स घर ले जाती है। इस हफ्ते का कारण नंबर 4 इज ऑल्सो अ धुरंधर।
1: नंबर 4।

लेकिन अब एक स्पेशल गाना, एक ऐसी फिल्म से जिसके डायलॉग्स लिटरली इंडियन पॉप कल्चर की परमानेंट प्रॉपर्टी बन चुके हैं। फ्रॉम जब वी मेट, कोई डाउट मत रखना दिल में, सिखनी है ये भटिंडा की।

अभी दसदा ने सिर्फ चार्ट्स क्लाइम नहीं किए, ऑनेस्टली उसने अक्षय कुमार के बॉक्स ऑफिस कॉन्फिडेंस को CPR दे दिया है। लेकिन इस वक्त बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर कॉन्वर्सेशंस थिएटर्स में नहीं, टेलीग्राम ग्रुप्स में चल रहा है। धुरंधर 2 द रिवेंज द सेकंड पार्ट बेसिकली, इंडिया में इसके OTT रिलीज का वेट इतना इंटेंस था ना कि लोग लिटरली काउंट डाउन कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म पहले एक प्लेटफॉर्म पे आनी थी और फिर 2 हफ्ते बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पे आनी थी, और इन दोनों OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस भाई EMI लगने लगे थे। और फिर बीच में मेकर्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, फिल्म को इंटरनेशनली रिलीज कर दिया 14 मई को। बस गेम ओवर, क्योंकि बॉलीवुड अभी तक ये बात समझ नहीं पाया है कि इंटरनेट को ज्योग्राफी समझ नहीं आती। अगर आपकी फिल्म दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक बार किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आ गई तो 2 घंटे में वो पायरेटेड वेबसाइट्स पर भी आ जाती है, और वो भी कोई 240 पिक्सल, वो सिनेमा हॉल वाला प्रिंट वाली क्वालिटी नहीं, जिसमें बीच में किसी की परछाई नजर आती है, पिक्चर हिल रही होती है या साउंड बिल्कुल बकवास होता है। आई एम टॉकिंग ऑफ प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर 4K फाइल। अब तो सोशल मीडिया पे लोग रिव्यूज से ज्यादा लिंक्स एक्सचेंज कर रहे हैं। पहले लोग पूछते थे कि भाई स्टोरी कैसी है, अब लोग पूछ रहे हैं भाई लिंक है क्या तेरे पास। और ये बहुत ही डेंजरस साइन है, क्योंकि एक वक्त था जब पायरेसी कन्वीनियंस की वजह से होती थी, आज पायरेसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रही है। ऑडियंस फिल्म देखना तो चाहती है, इनफैक्ट इमीडिएटली देखना चाहती है, लेकिन अफोर्डेबल तरीके से देखना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि अब फिल्म देखने के लिए एक आदमी को 3 apps, 4 passwords, 5 subscriptions और 15-20 एड से गुजरना पड़ता है, और इसीलिए पायरेसी फिर से एक डरावना कमबैक कर रही है। और आयरनी देखो ना, जिस फिल्म को लोग इलीगली हंट कर रहे हैं उसी फिल्म का गाना 14 हफ्तों से इंडिया का नंबर 1 गाना बना हुआ है, फ्रॉम धुरंधर शरारत। और ये शरारत सच में महंगी पड़ गई। नंबर 1।

0: The Mania is still on, but शरारत बाकी गानों से ज्यादा पॉपुलर निकलेगा ये कभी नहीं सोचा था। एक और टाइटल ट्रैक है इश्क चला कर है, गहरा हुआ आरी आरी, इनको सुन के लगा था कि ये शायद आगे निकल जाएंगे, बट नो, शरारत इट इज। बढ़े या मेरी थोड़ी ना चलती है, इट इज यू एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम मिर्ची टॉप 20 के एक नए एपिसोड के साथ। अंटिल देन सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

मैं तो उड़ा उड़ा उड़ा उड़ा उड़ा वे कजरा मेरे अंदर हुंदी शूशा शूशा हर वेले हंसा कवा हूँ हाँ।

98.3 Mirchi. It's hot. Aye, aye.

Mirchi, it's hot.

0: हुआ झुमका रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका और अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s-2000s का इंडी पॉप क्लासिक है। सम स्पेशल सरप्राइजेस, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं हफ्ते के काउंटडाउन के विद गाना नंबर 10। मिका सिंह दैया द रैपर का गाना, गाने का नाम है छोरी। दो हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, छोरी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना अ कोक स्टूडियो सॉन्ग, गाने का नाम है ए अजनबी। पिछले हफ्ते से ये गाना दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है। ए अजनबी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। छोरी ऑन नंबर 10, ए अजनबी ऑन गाना नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: आदित्य रिखारी, रैबिट और कुटले खां का गाना, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। गाने का नाम है ए अजनबी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हो गए, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: यू आर लिस्टिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। गाना नंबर 9 पर हमने आदित्य रिखारी एंड कुटले खां को एक गाने में सुना। आदित्य रिखारी हु इज द पॉप सेंसेशन, कुटले खां राजस्थान के फोक म्यूजिक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो इतने अलग दुनिया के आर्टिस्ट सिर्फ कोक स्टूडियो ही एक गाने में ला सकता है। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो एक नई एंट्री है एंड दिस इज अ डेब्यू जो हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बिकॉज अदनान सामी इज बैक विद अ न्यू सॉन्ग। अदनान सामी के गानों के बारे में हम जैसे ही सोचते हैं तो वो पावरफुल रोमांटिक बैलेड्स याद आते हैं।

0: बट जो उनका नया वाला गाना है, इट्स अ हाई एनर्जी पॉप प्रोडक्शन. रस्टिक इंडियन टेक्सचर्स भी हैं, थोड़े राजस्थानी इन्फ्लुएंसेस भी हैं, बट इट्स ऑल दैट अदनान सामी इज वेरी वर्सेटाइल. गाने का नाम एक्चुअली लिपस्टिक है. पूरा गाना हम अभी आपके लिए प्ले करने वाले हैं. दिस सॉन्ग इज ट्राइंग टू ब्रेक द स्टिग्मा अराउंड लिपस्टिक, स्पेशली हमारी इंडियन सोसाइटी में, जहाँ थोड़ी बोल्ड लिपस्टिक लगा लिया, रेड शेड ज्यादा रेड हो गया तो ऑफिस में ही चार लोग टोक देते हैं. गाने की जो म्यूजिक वीडियो है, फीचर्स वुमेन ऑफ ऑल जेनरेशंस, ओल्डर वुमेन, स्मॉल टाउन कैरेक्टर्स. यू विल सी समवन यू नो इन दिस म्यूजिक वीडियो. बट द बेस्ट पार्ट इज हाउ अदनान सामी इज फुली प्लेइंग अ कैरेक्टर इन द वीडियो. एक्सप्रेसिव स्टाइलिंग, वेरी ट्रांसफॉर्म्ड लुक. उनके सुरमे पे ध्यान देना, बट गाना उन्होंने बहुत फन बनाया. और बहुत वक्त के बाद हम एक ऐसा हाई पेपी पॉप गाना सुन रहे हैं फ्रॉम अदनान सामी. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. नया नवेला गाना डेब्यू कर रहा है सीधा ऑन गाना नंबर 8, अदनान सामी की कॉम्पोजिशन, अदनान सामी की आवाज में, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स. गाने का नाम है लिपस्टिक. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची

0: मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, मिटर और एंड स्वरा वर्मा की आवाज, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना दिलजीत दोसांझ का गाना डीलर, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन नीचे ड्रॉप करके ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। अभी के अभी कनेक्ट करो, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम। कोई गाना शेयर करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। दरअसल आर्टिस्ट जो सिर्फ गाने नहीं बनाते हैं, वो प्रॉपरली अपने गानों से ऑडियंस की अटेंशन को होल्ड करना जानते हैं। And one of such artists is Himesh Reshammiya. He's back with a new song. Unke naye gaane ka naam hai Sharab. I really think Himesh could have chosen some other word for the song. Mujhe thodi problem hai. Lekin meri is problem se mujhe is gaane ke baare mein kya feel hota hai, wo change nahi hota. Interesting baat to ye hai that this song is absolutely through and through Himesh, but also sounds very new. Wahi larger than life energy hai. Kaafi dramatic sa romance hai. Ek instantly pakad mein aa jaane wala hook. But there is some twang in the song. That Rajat Nagpal effect aapko सुनाई देगा, जैसे कि किसी गाने को एकदम ग्लॉसी कोट कर दिया है। राणा सोतल के लिरिक्स हैं, द वीडियो फीचर्स मनुषी चिल्लर, सो द ओवरऑल पैकेज इज इनक्रेडिबल। इन फैक्ट आई वुड गिव थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर अश्काय हु मेड मी सी द म्यूजिक वीडियो, एंड देन मेरा थोड़ा सा ओपिनियन इस गाने के बारे में बदला, बिकॉज जब मैंने सिर्फ ऑडियो सुना आई थॉट यार ये गाना कैसे हिमेश के फैंस को पसंद आएगा, बट देन दैट्स व्हाट हिमेश रेशमिया डज, किसी ना किसी तरीके से हमारा अटेंशन ग्रैस्प कर लेते हैं। एंड आई स्वेयर जब मैंने म्यूजिक वीडियो के साथ ये गाना ना, तो मैंने वापस रिपीट किया और वापस म्यूजिक वीडियो देखा। चाहे आप सीरियसली सुनो, नॉस्टैल्जिक होके सुनो, आयरोनिकली सुनो, यू विल टॉक अबाउट हिमेश रेशमिया एंड हिज न्यू सॉन्ग। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। हिमेश रेशमिया का गाना, रजत नागपाल, राणा सोतल की कॉम्पोजिशन, लिरिक्स, गाने का नाम है शराब। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: हिमेश रेशमिया की आवाज में दैट वॉज शराब ऑन आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट। अशकाय और मैं बेट कर रहे हैं दैट ये गाना कब डेब्यू करेगा, अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते। मेरे को लगता है कि ये गाना नंबर 5 से 7 के बीच में डेब्यू करेगा। व्हाट डू यू थिंक? If you want to predict at RJ Kanika par aake mujhe batao. Now back to the countdown, agle wale gaane ki bari. Diljit Dosanjh Sia ka gaana, gaane ka naam hai Ranjha. Pichle hafte se apni position par barkarar, Ranjha is playing right next for you on Gaana number 5. You are listening to Gaana Indie Top 10, bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
1: Number 5.

Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 5.

0: कभी कभी एक फिल्म खत्म होने के बाद भी वो खत्म नहीं होती। धुरंधर और धुरंधर 2 एग्जैक्टली वैसी ही फिल्म्स निकली। सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं, कल्चरल टेक ओवर किया, मीम्स आए, फैन एडिट्स आए, एक्शन सीन्स वायरल हुए। लेकिन सबसे डेंजरस चीज पता है क्या हुई? डायलॉग्स जो है वो हमारे दिलो दिमाग में घुस गए। और ऑनेस्टली बॉलीवुड को इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आजकल हम देखो फिल्म्स देखते तो बहुत हैं, लेकिन याद हमें बहुत कम रहती हैं। क्योंकि एक वक्त था जब हिंदी सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता था, रोजमर्रा की भाषा हुआ करती थी। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तुमसे ना हो पाएगा। ये लाइन्स स्क्रिप्ट्स का पार्ट नहीं थी, ये इंडिया का पॉप कल्चर सॉफ्टवेयर थी। लेकिन आज हजार करोड़ की फिल्में आ रही हैं, लेकिन थिएटर से बाहर निकलते ही आधे से ज्यादा डायलॉग्स मेमोरी से लॉग आउट कर जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि या तो फिल्म्स रियलिज्म में इतनी धीमी हो गई हैं कि कोई लाइन हवा नहीं पकड़ती, या फिर हर दूसरा डायलॉग एक मास मोमेंट बनने की इतनी कोशिश करता है कि असली स्वैग गायब हो जाता है। आइकॉनिक डायलॉग्स लिखे नहीं जाते यार, वो फील होते हैं। और धुरंधर ने हमें याद दिलाया कि बॉलीवुड जब डायलॉग बाजी सही करता है ना, तो ऑडियंस सिर्फ तालियां नहीं बजाती, वो डायलॉग्स घर ले जाती है। इस हफ्ते का कारण नंबर 4 इज ऑल्सो अ धुरंधर।
1: नंबर 4।

लेकिन अब एक स्पेशल गाना, एक ऐसी फिल्म से जिसके डायलॉग्स लिटरली इंडियन पॉप कल्चर की परमानेंट प्रॉपर्टी बन चुके हैं। फ्रॉम जब वी मेट, कोई डाउट मत रखना दिल में, सीखनी है ये बडिंडा की।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर थ्री
3: वाह

तू ही दसदा ने सिर्फ चार्ट्स क्लाइम नहीं किए, ऑनेस्टली उसने अक्षय कुमार के बॉक्स ऑफिस कॉन्फिडेंस को CPR दे दिया है। लेकिन इस वक्त बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर कॉन्वर्सेशंस थिएटर्स में नहीं, टेलीग्राम ग्रुप्स में चल रहा है। धुरंधर 2 द रिवेंज द सेकंड पार्ट, बेसिकली इंडिया में इसके OTT रिलीज का वेट इतना इंटेंस था ना कि लोग लिटरली काउंट डाउन कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म पहले एक प्लेटफॉर्म पे आनी थी और फिर 2 हफ्ते बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पे आनी थी, और इन दोनों OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस भाई EMI लगने लगे थे। और फिर बीच में मेकर्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, फिल्म को इंटरनेशनली रिलीज कर दिया 14 मई को। बस गेम ओवर, क्योंकि बॉलीवुड अभी तक ये बात समझ नहीं पाया है कि इंटरनेट को ज्योग्राफी समझ नहीं आती। अगर आपकी फिल्म दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक बार किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आ गई तो 2 घंटे में वो पायरेटेड वेबसाइट्स पर भी आ जाती है, और वो भी कोई 240 पिक्सल्स वो सिनेमा हॉल वाला प्रिंट वाली क्वालिटी नहीं, जिसमें बीच में किसी की परछाई नजर आती है, पिक्चर हिल रही होती है या साउंड बिल्कुल बकवास होता है। आई एम टॉकिंग ऑफ प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर 4K फाइल। अब तो सोशल मीडिया पे लोग रिव्यूज से ज्यादा लिंक्स एक्सचेंज कर रहे हैं। पहले लोग पूछते थे कि भाई स्टोरी कैसी है, अब लोग पूछ रहे हैं भाई लिंक है क्या तेरे पास। और ये बहुत ही डेंजरस साइन है, क्योंकि एक वक्त था जब पायरेसी कन्वीनियंस की वजह से होती थी, आज पायरेसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रही है। ऑडियंस फिल्म देखना तो चाहती है, इनफैक्ट इमीडिएटली देखना चाहती है, लेकिन अफोर्डेबल तरीके से देखना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि अब फिल्म देखने के लिए एक आदमी को 3 apps, 4 passwords, 5 subscriptions और 15-20 एड से गुजरना पड़ता है, और इसीलिए पायरेसी फिर से एक डरावना कमबैक कर रही है। और आयरनी देखो ना, जिस फिल्म को लोग इलीगली हंट कर रहे हैं उसी फिल्म का गाना 14 हफ्तों से इंडिया का नंबर 1 गाना बना हुआ है, फ्रॉम धुरंधर शरारत। और ये शरारत सच में महंगी पड़ गई। नंबर 1।

0: The Mania is still on, but शरारत बाकी गानों से ज्यादा पॉपुलर निकलेगा ये कभी नहीं सोचा था। एक और टाइटल ट्रैक है इश्क चला कर है, गहरा हुआ आरी आरी, इनको सुन के लगा था कि ये शायद आगे निकल जाएंगे, बट नो शरारत इट इज। बढ़े या मेरी थोड़ी ना चलती है, इट इज यू एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम मिर्ची टॉप 20 के एक नए एपिसोड के साथ। अंटिल देन सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: Mirchi, it's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

Mirchi. It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Dinner,

मग सनि धनि सगमा मग सनि धनि सगमा ग म ग सनि धम ग म धनि सनि ध

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

मिर्ची इट्स हॉट।

मॉर्निंग माय चाय लवर्स, मैं हूँ प्रिस्ला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और यहाँ पर हम वेदर का अपडेट लेने वाले हैं. सो करंटली इट्स 56 डिग्रीज फारेनहाइट. इट्स अ बिट क्लाउडी आउटसाइड बट इट फील्स मोर लाइक 58 डिग्रीज फारेनहाइट. बेसिकली वेदर कह रहा है कि मैं ठंडी में हूँ या थोड़ा सा गर्मी में हूँ, पता नहीं चल रहा है. आज बरसात हो रही है सुबह 7 बजे से, तो अगर तुम्हारे बालों ने टोटली 2 घंटे लिए है बनने के लिए, तो माई सिंसियर कंडोलेंसेस टू योर हेयर स्टाइल. लास्ट 24 आवर्स में अराउंड 21 मिलीमीटर्स की बरसात हो चुकी है एंड थैंकफुली नेक्स्ट 24 आवर्स में सिर्फ 2 मिलीमीटर्स की बरसात एक्सपेक्टेड है. सो आज के दिन लेस ऑफ बॉलीवुड की बरसात एंड मोर ऑफ लिटिल स्प्रिंकल दैट विल रुइन योर व्हाइट स्नीकर्स. तो आज पहनकर मत जाना बाहर. एंड नाउ गुड न्यूज इज द टेम्परेचर इज क्लाइंबिंग अप टुडे. वी आर लुकिंग एट अ हाई ऑफ 74 डिग्रीज फारेनहाइट. यस्टरडे वॉज गिविंग लेफ्ट ओवर विंटर एनर्जी फ्रॉम 51 to 58 डिग्रीज फारेनहाइट, लेकिन आज के दिन थोड़ा सा बढ़ रहा है तापमान. ऑल्सो आज भी लेयर के प्लेयर फ्रेंडली बनकर जाओ. मॉर्निंग में हुडी, आफ्टरनून में सनग्लासेस एंड इवनिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा तुम्हारी लाइफ में. एंड हाँ, इफ यू आर प्रिटेंडिंग टू वर्क व्हाइल सीक्रेटली डे ड्रीमिंग अबाउट समोसास, फटाफट से जाओ मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. Now keep yourselves hydrated. Mirchi ki vibe banaye rakho. Mirchi mornings, but this is Priscilla. Stay tuned and stay hot.

आज के दिन ज्यादा ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं क्योंकि आज का दिन ही ड्रामेटिक है. मैं हूँ प्रिस्सिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. गुड मॉर्निंग. हम चलने वाले हैं थोड़ी सी टाइम ट्रैवलिंग जर्नी के लिए. तो सबसे पहले चलते हैं 1886 में. राज बिहारी बोस वॉज बॉर्न, वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी माइंड्स बिहाइंड द इंडियन नेशनल आर्मी. एंड फिर 1899 में लेजेंडरी बंगाली पोएट काजी नजरुल इस्लाम वॉज बॉर्न. 1915 में महात्मा गांधी ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड द साबरमती आश्रम नियर अहमदाबाद, एके द ओरिजिनल मिनिमलिस्ट इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल. फास्ट फॉरवर्ड टू 1961, JFK टोल्ड अमेरिका दैट सेंड अ मैन टू द मून बिफोर द डेकेड एंडेड. फिर 1977 में स्टार वॉर्स रिलीज फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. And in 2012, SpaceX's Dragon spacecraft docked successfully with the International Space Station. Also today, we remember heavier moments too, including the global movement sparked in 2020 after George Floyd's death. Okay, now take a deep breath, fix that hoodie, pretend to answer emails seriously and keep vibing with me. Mirchi Mornings par main hoon Prisala tumhare saath mein. And Insta aur X par mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हेलो देयर माय ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, चाय गरम, कॉफी गरम और गॉसिप गर्मा गरम। फिलहाल लिसन टू दिस, इंडिया ऑफिशियली हैज अ न्यू स्पीड किंग नेम्ड गुरिंदर वीर सिंह। ही जस्ट बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन एवर इन द 100 मीटर्स, क्लॉकिंग एन इनसेन 10.09 सेकंड्स। 10.09, भाई मेरे ऊबर ईट्स वाले को बिल्डिंग एंट्रेंस ढूंढने में उससे ज्यादा टाइम लगता है। एंड हिज स्टोरी इज प्योर फिल्मी। बॉर्न इन पटियाल village in Punjab's Jalandhar district, Gurinder Veer started athletics at just 6 years old. But when most of us were eating Parle G and arguing over कौन सा कार्टून देखना चाहिए, ये जो है वो ट्रेनिंग कर रहे थे to become lightning fast. Sports literally runs in the family. His dad was a national level volleyball player. His grandfather played kabaddi and served in the Indian army. Basically, genes ne bola beta, tumko to athlete hi banna hai. And wait, he's also a petty officer in the Indian Navy. मतलब स्पीड भी, देश की सेवा भी और रैकेट्स भी, सब कुछ हासिल कर रही है। Honestly, stories like this hit differently when you're living away from home, right? Makes you feel proud of your nation. Big salute to Gurinder Veer Singh, proving once again ki desi talent ki koi seema nahi hoti hai. Filhal abhi seema aa chuki hai mere bolne ki, yahan par thoda sa gaano ka break lenge, wo bhi Mirchi Dar bangers. Tum jab tak jao mujhe follow karo Instagram aur X par, mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

हाय गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। यार ऑनेस्टली देसी लाइफ इन अमेरिका इज वन बिग डेली प्लॉट ट्विस्ट, है ना। रात को यू से बस वन एपिसोड मोर एंड नेक्स्ट थिंग यू नो इट्स 2:17 AM एंड यू आर इमोशनली अटैच्ड टू अ कोरियन विलन, और सुबह ऑफिस में कैमरा ऑफ करके प्रिटेंड करते हो नेटवर्क इशू चल रहा है, लेकिन कॉल्स भी अटेंड करनी जरूरी है। बट डोंट यू वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए फुल ऑन बॉलीवुड का तड़का, गॉसिप्स गलोर एंड साथ साथ में म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर। ये सब कुछ तुम्हें मिल रहा है मेरे मॉर्निंग्स पर, मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ, विच इज ओनली योर नंबर वन ब्रेकफास्ट शो। तो अपनी कॉफी, चाय, ब्रेकफास्ट सब कुछ रेडी कर लो, हम चलने वाले एक ऑसम जर्नी पर अगले कुछ घंटों के लिए। मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, फटाफट से जाओ मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 64724. Stay tuned and stay hot.

0: हेलो जी, सत श्री अकाल, वनकम, नमस्ते। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब सुनोगे अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स। सबसे पहले US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जॉइंड अमेरिकाज 250th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन दिल्ली थ्रू अ फोन कॉल एंड हैड सम वेरी वार्म वर्ड्स फॉर PM नरेंद्र मोदी। ट्रंप सेड एंड आई कोट लूजली इन देसी लैंग्वेज, वो मोदी जी के परम मित्र और परम फैन है। ही ऑल्सो सेड इंडिया कैन काउंट ऑन हिम एनी टाइम। And number two, per ahead of Bakri Eid, UP Chief Minister Yogi Adityanath announced that animal sacrifice should only happen at designated places and not in public spaces. He also instructed officials to ensure proper waste disposal and said namaz should happen at traditional venue without blocking roads. Basically, authorities are focusing on safety, cleanliness and smooth public movement during the festival. And finally, number three, per IPL drama, Rajasthan Royals aka RR grabbed the final playoff spot after defeating Mumbai Indians by 30 runs at Wankhede Stadium. Meanwhile, PBKS and KKR fans are currently opening old Next Year Is Ours draft from Google Docs. Now, RR faces SRH in the eliminator, while RCB takes on GT in qualifier 1. And that's it for Mirchi Hour Ka 3. For this hour, main hoon Priscilla, tumhare saath mein. Insta aur X par mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.
1: Yeah. Yeah. You already know what it is.

सारा मेरा उप्स। रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची।

देयर माय पीपल, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड बॉलीवुड इंटरनेट इज डूइंग व्हाट इट डज बेस्ट, टर्निंग वन मोर मूवी क्लिप इनटू अ मीम फेस्ट. एक्ट्रेस अनन्या पांडे'स न्यू फिल्म चांद मेरा दिल रिलीज्ड ऑन मे 22nd एंड वन सीन शोइंग हर परफॉर्मिंग भरतनाट्यम हैज गॉन वायरल फॉर लेट्स जस्ट से रीजंस नॉट मेंशनड इन डांस टेक्स्ट बुक्स. सोशल मीडिया यूजर्स हैव बीन कॉलिंग द परफॉर्मेंस रोबोट लाइक एंड मीम क्रिएटर्स ओ देव अराइव्ड फास्टर देन रिलेटिव्स हियरिंग free food. One viral comment said Bharatnatyam originated in 200 BCE and ended with Ananya Pandey in 2026. That was pretty savage. Now listen, internet jokes aside, classical dancing is seriously difficult, yaar. One wrong hand movement and suddenly you look less graceful and more disgraceful. And honestly, every Desi kid who was forced into annual day performances understands this trauma personally. But hey, viral is viral. Aur aaj ki duniya mein ek dance clip has become content, controversy and meme material. Sab kuch ek saath hi. What do you think about it? Is it okay to troll actors or is it too insensitive? Let me know. Mirchi Pris is my handle name, MIRCHIPRIS on Instagram and X. And WhatsApp par mera number hai 9033Mirchi. That's 9033647244. Filhal chalate Mirchi Dar Bangers tumhare liye. Stay tuned and stay hot.

माय बर्थडे बेबीज, मैं हूँ प्रिस्सिला तुम्हारे साथ में. ये है मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पीएस्ट बर्थडे इफ यू आर सेलिब्रेटिंग टुडे. मे योर बैंक बैलेंस ग्रो फास्टर देन योर स्क्रीन टाइम. एंड अब पता करते हैं तुम्हारे साथ आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे कौन शेयर कर रहा है. सबसे पहले वीव गॉट ऑस्कर विनिंग एक्टर किलियन मर्फी. Hashtag please respect the cheekbones. Also celebrating is powerhouse actress Octavia Spencer and legendary British actor Sir Ian McKellen, aka Gandalf from Lord of the Rings. And we've got comedy king Mike Myers, who's born today, the man behind Austin Powers. Honestly, अगर आज के दिन तुम भी इस धरती पर प्रकट हुए तो your personality probably has main character energy and super talented vibes. With that, happy birthday to you once again. And अभी फिलहाल तुम celebrate कर रहे हो या सबसे अपना birthday छुपा रहे हो, मुझे shout out भेज सकते हो. Mirchi Pris is my handle name Instagram or X पर, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp पर मेरा number है 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में एंड इट्स टाइम फॉर सोना एंड चांदी का रेट अपडेट ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: राजोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,700 पर ट्राउंस, $4,700 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, 12 इंस्टॉलमेंट में बिना किसी हिडन फी के 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड। राज ज्वेल्स की टीम के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए घर लेके जाएं और 12 किश्तों में पैसे दें। कैसे? आइए राज ज्वेल्स के साथ रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: एंड देयर यू हैव इट, एक्सक्लूसिव गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट मिर्ची मॉर्निंग्स पर तुमने सुना। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दार गानों की बारी है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे।

हाय मल्टीटास्कर्स, दिस इज प्रिसिला विद यू सुन रहे द मिलिट्री मॉर्निंग। जरा बारी आ चुकी है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक अनयूजुअल केस पॉप्ड अप इन्वॉल्विंग अ सटायरिकल पॉलिटिकल ग्रुप कॉल्ड द कॉकरोच जनता पार्टी। द कोर्ट डिक्लाइंड एन अर्जेंट हियरिंग सेइंग देयर वाजंट ग्रेव अर्जेंसी इन द मैटर। चीफ जस्टिस सूर्यकांत हुज कमेंट स्टार्टेड ऑल दिस सेड डोंट टेक इट सो सेंटिमेंटली। नंबर टू पर गूगल डीप माइंड एआई सिस्टम कॉल्ड अल्फा प्रूफ नेक्सस हैज अपेरेंटली सॉल्वड मैथ प्रॉब्लम्स ह्यूमंस कुडंट क्रैक फॉर 56 ईयर्स। AI reportedly solved super complex math problems using only a few $100 of computing power. And finally, number three per from the sports universe. At the so-called steroid Olympics, officially called as the Enhanced Games, Olympic swimmer Hunter Armstrong won the 50-meter backstroke event while competing completely clean without performance-enhancing drugs. Which honestly sounds like showing up to a fast and furious race on a scooter and still winning. The event has sparked big conversations globally around fairness, sports ethics and athlete safety. And yeah, definitely one of the wildest headlines of the week. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 with me Priscilla on Mirchi Mornings. Connect karo mujhse Insta aur X par, mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: वेलकम बैक माय क्यूटीज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और अब बारी है राशि जोन नंबर टू की।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी तुला राशि, रिस्ट्रिक्शंस आर फाइनली लिफ्टिंग एंड मोमेंटम इज रिटर्निंग। बस ज्यादा फास्ट मत भागो यार, लाइफ इजंट एन अमेज़न डिलीवरी रेस। लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर ग्रे, लकी नंबर इज 21। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, एडवेंचर वाइब्स आर स्ट्रॉन्ग टुडे, लेकिन प्लीज मॉनिटर योर स्पेंडिंग। योर वॉलेट कैन नॉट सर्वाइव अनदर स्मॉल ट्रीट फॉर माई सेल्फ। लकी कलर इज बर्गंडी रेड, लकी नंबर इज 5। सजिटेरियस यानी धनु राशि, द स्टार्स वॉन्ट यू आउटसाइड लिविंग लाइफ टुडे। स्टे social, have fun, but remember where you parked the car, okay? Lucky color is sunset orange, lucky number is 40. Capricorn yani makar rashi, you are dreaming big today and honestly good. Stop waiting for the perfect plan, some of life's best moments begin with, let's just see what happens. Lucky color for you is charcoal purple, lucky number is 9. Aquarius yani kumbh rashi, creative energy and romance are looking fabulous, but you need to make the first move. The universe is supportive, not your personal intern. Lucky color is aqua mint, lucky number is 27. And last but not the least, Pisces yani mean rashi, someone close to you quietly needs support today. Your emotional radar is strong right now, reach out before they even ask. Lucky color is pearl white, lucky number is 14. And that was your rashi zone number 2. Mere yani ki Priscilla ke saath on Mirchi Mornings. Mujhse connect karo insta or x par, mera handle name hai Mirchi Pris, that is mirchipris. And whatsapp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

हेलो, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स एंड इट्स टाइम फॉर मी टू रैप अप. लेकिन बिफोर आई गो, वन लास्ट इंटरनेट स्टोरी दैट हैज पीपल कलेक्टिवली क्वेश्चनिंग देयर रेंट पेमेंट्स. एक ट्रैवल ब्लॉगर ने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया है फ्रॉम शंगडू चाइना, जो कि वायरल हो गया है, विच कॉस्टेड अराउंड 1,100 रुपीज पर नाइट. एंड इट वॉज इन मैट्रेस ऑन द फ्लोर मिस्ट्री स्मेल वाला सिचुएशन. द रूम हैड अ वॉशिंग मशीन, इंडक्शन कुकटॉप, फ्रिज, प्रोजेक्टर सेटअप एंड अ loft style design. At this point, the hotel had more stability than some relationship. Naturally, Desi internet lost its mind. People started comparing it to accommodation prices back home. Like, excuse me, for this budget, in some cities, we barely get one towel and emotional damage. And honestly, as a Desi expat, this news hurts differently, right? Because we are out here paying half our salaries for apartments where the washing machine sounds like it's fighting demons every Tuesday. लेकिन ऐसे travel content देखकर ना मन करता है कि जल्दी से sky scanner खोला जाए, immediately financially irresponsible decisions लिए जाए. And on that dangerous note, my beautiful people, I'm heading out before I book flights that I cannot emotionally justify. Follow me Instagram or X पर. मेरा handle name है Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. That's 9033 647 244. You stay tuned and stay hot.

0: कल रात तो दिल खुशी हो गया, रात में सोने से पहले मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन नहीं देखी, मैंने देखी द मूवी प्रिटी वुमन।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sarah, आपकी 90s की यादों का फिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और देखो पता है, सोने से पहले जो कुछ आप पढ़ के या देख के या सोच के सोते हो ना, वो डिसाइड करता है कि आपको किस तरीके के ख्वाब आएंगे और आपकी अगली सुबह जो है वो किस मूड के साथ शुरू होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी लाइफ का कि रात में सोने से पहले हमने क्या सोचा, हमने अपना दिमाग कहाँ लगाया। सो मैंने सोचा कि यार मतलब अभी क्या हो रहा है कि ना हम फोन के अंदर इतना ज्यादा घुसे हुए हैं कि मैंने कहा फोन को साइड में रखते हैं और अब ऐसी मूवी देखते हैं जिससे कि भले मैंने मूवी पता नहीं कितनी बार देखी हुई है लेकिन स्टिल आई वॉन्टेड टू डाइवर्ट माई माइंड एंड आई पिक्ड अप द मूवी प्रिटी वुमन एंड आई वॉच दिस फिल्म बिकॉज मुझे जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड गियर की ये फिल्म बड़ी अच्छी लगती है और ये जोड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है यार। एंड बाय द वे ये जो फिल्म है ना, इसका एक सीन है, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो देखना जरूर, और अगर देखी है तो आपको ये सीन शायद याद होगा जब रिचर्ड गियर जूलिया रॉबर्ट्स के सामने एक ज्वेलरी बॉक्स रखते हैं और जूलिया रॉबर्ट्स जो है शी रीचेज आउट फॉर द पीस ऑफ ज्वेलरी और एकदम से वो बॉक्स बंद कर देते हैं, तो यू नो वो एकदम से अपना हाथ पीछे खींचती है एंड शी इज अ बिट स्टार्टल्ड एंड वो एकदम से ना मतलब शी ब्रेक्स इनटू अ लाफ्टर और वो लाफ्टर उनकी बड़ी ऑर्गेनिक लगती है, बहुत प्यारी लगती है। एंड दैट सीन वॉज एक्चुअली अ सीन जो कि डायरेक्टर ने प्लान किया था एज अ प्रैंक ऑन जूलिया रॉबर्ट्स बिकॉज जूलिया रॉबर्ट्स जो कि एट दैट टाइम was very new to the industry, वो अक्सर सेट्स पर ना बड़ी स्लीपी हुआ करती थी, उनको हमेशा ही नींद आ रही होती थी, तो उनकी नींद भगाने के लिए उन्होंने सोचा कि यार ये प्रैंक करते हैं और जूलिया रॉबर्ट्स को एकदम से ना चौंका देते हैं, तो उनकी नींद वींद जो है ना वो भाग जाएगी। और वो सीन जैसा शूट हुआ वैसा ही रखा गया सो दैट वो ऑर्गेनिक भी लगे और ऑफकोर्स उस सीन के साथ एक याद जुड़ी रहे जो आज इतने सालों बाद मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। नहीं, अब जब अच्छी जोड़ियों की बात की जा रही है तो हॉलीवुड से बॉलीवुड पे आते हैं यार, अपना एरिया है, और बॉलीवुड की 90s और अर्ली 2000 की कुछ फेमस ऑन स्क्रीन जोड़ियां हैं जो हम सबके दिल को छू गई है, उनके बारे में बात करते हैं। तो आज मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई मैं आपसे यही सारी बातें करने वाली हूँ। अभी के लिए तो फिलहाल मैं आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दोस्ती के नाम पर अगर कभी मैं दुआ देती हूँ ना, तो मैं यही कहती हूँ कि दोस्ती हो तो काजोल और शाहरुख जैसी, जो कि ऑन स्क्रीन तो दिखाई देती देती है लेकिन ऑफ स्क्रीन उससे ज्यादा तगड़ी है, तभी तो ऑन स्क्रीन इतनी अच्छी केमिस्ट्री निकल कर आती है।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड शाहरुख खान एंड काजोल की जोड़ी, ओ हो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर आज तक भी इस जोड़ी को हम मिलेनियल्स नहीं भूल पाए। ये जोड़ी तो इनफैक्ट बेंचमार्क बन गई है यार बॉलीवुड की जोड़ियों के बीच में, कि यार ऐसी केमिस्ट्री, ऐसा स्पार्क, इतना फन हमें बहुत कम नजर आ रहा है तब से लेकर अब तक, नहीं क्या? एंड यू नो व्हाट, इन दोनों ने DDLJ में तो काम किया ही किया, वहां से तो ऑफकोर्स इस जोड़ी का और हो गया, लेकिन बाजीगर में सबसे पहले इन दोनों ने काम किया था। एंड बाजीगर का एक किस्सा है ऑफ द स्क्रीन ऑफ कोर्स, कि हुआ ये था कि जो शूट था वो 1 जनवरी को शुरू हुआ था एंड 31 की रात को सब पार्टी करके, यू नो, विद अ हैवी हेड, क्योंकि कोई सोया था, कोई नहीं सोया था। जब सेट पर पहुंचे तो ऑफ कोर्स एक रात पहले तो उन्होंने बहुत ही भारी भरकम पार्टी की हुई थी एंड ही वाज वेरी स्लीपी एट दैट टाइम। ऑन द कॉन्ट्ररी, काजोल वो पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ बातें करती चली जा रही थी, जो उनको मिल रहा था उससे बात करती चली जा रही थी। पर शाहरुख खान वाज वेरी साइलेंट, क्योंकि उनका ना सर भारी हो रहा था, उन्हें नींद आ रही थी, तो ही वाज नॉट रियली इंटरेस्टेड कि वो ना चैटर बॉक्स बने उस टाइम पर। काजोल को लगा कि ये तो अलग ही निकल के आया बंदा, इसके तो एटीट्यूड ही नहीं खत्म हो रहे हैं। वो तो लेटर ऑन इन दोनों की केमिस्ट्री जो है वो सेट हुई, बात हुई, तो पता लगा कि नहीं भाई, बंदा इतना एटीट्यूड वाला है नहीं। ऐसे ऐसा हुआ था कि 31 की रात को जब बंदे ने पार्टी करी है तो 1 की सुबह वो कैसे चर्पी हो सकता है। बस फिर क्या, उसके बाद से लेकर आज तक तो ऊपर वाले के करम से इनकी दोस्ती की गाड़ी को ब्रेक नहीं लगे। टचवुड इनकी जोड़ी ऊपर वाला सलामत रखे। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: शाहरुख एंड माधुरी की जोड़ी या फिर सलमान खान और माधुरी की जोड़ी? आई थिंक आई लाइक्ड सलमान एंड माधुरी की जोड़ी मोर ऑन स्क्रीन देन शाहरुख खान एंड माधुरी की जोड़ी, नहीं क्या?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ये ना मेरे लिए भी बचपन में टफ हो जाया करता था कि मुझे कौन सी वाली जोड़ी ज्यादा पसंद आती है। और आज मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को हम 90s के गियर में डालते हुए 90s और अर्ली 2000 की बॉलीवुड की हिट और फेमस जोड़ियों के बारे में बात करें, जिनमें से एक है सलमान खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी भी। एंड वेल, ये काफी हिट जोड़ी थी ऑफकोर्स। इन लोगों ने हम आपके हैं कौन साथ में करी, साजन करी, एंड ये दोनों ही मूवीज बड़ी हिट थी। इनफैक्ट जब हम आपके हैं कौन के लिए कास्टिंग हो रही थी एंड एट दैट टाइम सलमान और माधुरी जब ऑन स्क्रीन नजर आए तो काफी सारे लोगों ने एक पॉइंट छेड़ा था कि माधुरी दीक्षित सलमान खान से ज्यादा बड़ी लग रही है ऑन स्क्रीन। बट कुछ भी कहो, हमें तो जोड़ी पसंद आई थी और उसके बाद तो इन लोगों ने और भी फिल्में साथ में करी थी। इनफैक्ट इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी नहीं, ऑफ स्क्रीन जोड़ी भी काफी अच्छी चली थी, बिकॉज ऑफ द रीजन कि जब ये लोग हम आपके कौन के लिए शूटिंग किया करते थे तो माधुरी दीक्षित ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सलमान खान बहुत मस्करी करते हैं ऑन द सेट्स ऑफ द मूवी, और उससे होता ये था कि सभी का मूड एकदम हल्का बना रहता था और शूट करने में मजा भी बहुत आता था। यार, ऐसे कलीग्स होना जो वक्त के साथ दोस्त बन जाए तो फिर बात ही क्या है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट। बाइज्जत, बामुलाइजा, होशियार, बिकॉज अब उस जोड़ी की बात कर रहे हैं मेरे यार जो 90s में सबसे ज्यादा हिट जोड़ी मानी जाती थी, जूही चावला एंड आमिर खान की जोड़ी।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड आज मिड्डे मोहब्बत पर जिक्र छिड़ा है 90s एंड अर्ली 2000 की बॉलीवुड की हिट जोड़ीज का, जिनमें से ऑफ कोर्स जूही चावला एंड आमिर खान की जोड़ी मुझे बड़ी पसंद आया करती थी। इनफैक्ट आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू टाइम्स जब ये दोनों और मूवीज साथ में करे, और इनकी अगर कोई न्यू रिलीज होती थी तो आई यूज टू बी वेरी एक्साइटेड एज अ किड। माय गॉड, मेरा एक्साइटमेंट लेवल भी कैसा होता था। लेकिन इनकी जोड़ी की केमिस्ट्री एक आध फिल्म पुरानी नहीं थी, इन लोगों ने तो अपना करियर ही साथ में किया था यार। कयामत से कयामत तक वॉज द फर्स्ट फिल्म फॉर बोथ ऑफ देम। एंड इनफैक्ट जब कयामत से कयामत तक शूट हो रही थी ना, तो उस शूट के दौरान एक ऐसा सीन था जिसमें जूही चावला को आमिर खान को थप्पड़ मारना था। अब उनसे थप्पड़ तो मारा ही नहीं जा रहा था, उन्हें बार बार हंसी आ रही थी उस सीन को करने में। एंड बार बार कट होता, एक्शन होता, थप्पड़ मारती, फिर हंसने लग जाती, फिर कट हो जाता। पता नहीं कितने थप्पड़ इस चक्कर में आमिर खान ने खा ली होंगी। लेकिन सबसे बड़ा थप्पड़ तो इनकी दोस्ती को तब लगा जब इन दोनों के बीच में मनमुटाव आ गया। एंड दैट हैपेंड ऑन द सेट्स ऑफ इश्क। जब ये लोग शूट कर रहे थे तो आमिर खान एंड अजय देवगन बोथ आर अ बिग प्रैंकस्टर्स ऑन द सेट्स ऑफ एनी फिल्म दैट दे डू। एंड यहाँ पर दो प्रैंकस्टर्स साथ में थे। और फिर एक दिन ऐसा आया कि सबको शिकार बनाते हुए जूही चावला भी एक दिन शिकार बनी इनके प्रैंक्स की, जिस पर जूही चावला को बहुत गुस्सा आया। उनको वो बात अच्छी नहीं लगी, सो मच सो दैट कि वो उस दिन शूट छोड़ के घर चली गई, जिसको लेकर आमिर खान बड़े नाराज हुए कि ये तो बड़ा ही अनप्रोफेशनल एटीट्यूड हो गया। वो डिफरेंस इन लोगों का कई सालों तक चला। एंड इवेंचुअली इन लोगों ने अपने मनमुटाव को आपस में ही बातचीत करके सुलझा लिया था, बिकॉज एट दैट टाइम राई का पहाड़ नहीं बनता था मीडिया के अंदर। दोस्ती को दोस्त आपस में ही सुलझा लिया करते थे, बाहर जाके चार लोगों को नहीं बताया करते थे। एनीवेज, आजकल तो एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 90s की एक ऐसी जोड़ी जिन्होंने जब ऑन स्क्रीन काम किया तो आग लगाई, और ऑफ स्क्रीन भी इनके किस्सों ने काफी आग लगाई।
1: सारा जमाना ए सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा, and I'm talking about अक्षय कुमार and Raveena Tandon की जोड़ी, जो कि 90s की on-screen सबसे popular जोड़ीज में से एक थी। Of course, मोरा का टिप टिप बरसा पानी, ये गाना तो आज तक कोई भी नहीं भुला पाया है जानी। आज भी ये हर पार्टी की शान होता है। और जब ये गाना शूट हो रहा था, at that time Raveena Tandon ठंड से काँप रही थी। एक तो पानी में कंटिन्यूसली डांस करना, ऊपर से उन्होंने कोई बहुत ही मोटा कपड़ा नहीं पहना हुआ था। एवरीबडी नोज की वो पतली सी कोई साड़ी थी जो पता नहीं कौन से मटेरियल की थी, लेकिन डेफिनेटली पतली थी, तो ऑफ कोर्स ठंड तो लगनी लगनी थी। इस पर अक्षय कुमार ने खुद ये तारीफ करी थी रवीना की कि उन्होंने इस गाने के अंदर तो कमाल ही कर दिया था। धीरे धीरे कर इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो है वो ऑफ स्क्रीन में भी तब्दील होती गई, एंड दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर सो मच सो दैट कि एट अ पॉइंट दे वर एंगेज्ड टू ईच अदर। But then things did not fall into place, जिससे कि रवीना टंडन को डेफिनेटली बहुत बड़ा धक्का लगा था उस जमाने में, because जब एंगेजमेंट हो जाती है तो अगला कदम शादी होता है, and she was looking forward to that when she got to know कि अक्षय कुमार सिर्फ उनके नहीं है। And a lot happened in the media and in interviews, जिसके बाद इन लोगों ने कभी साथ में काम नहीं किया। But I was really surprised to see them both sharing the same stage किसी reality show पर। And of course, दोनों ही अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ चुके हैं। Professionalism की बात की जाए, तो let bygones be bygones वाला मामला ही सेट रहता है। क्या बोलते हो? अभी के लिए तो अपन आगे बढ़ते हैं with the next track, you stay tuned with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot.
3: मिर्ची

0: ऋतिक रोशन की जब डेब्यू फिल्म आई थी तो उन्होंने पूछा कहो ना प्यार है, तो एक आध लड़कियों ने नहीं, हजारों लाखों लड़कियों ने एक साथ कहा होगा कि हाँ भाई प्यार है, तुम एक बार हाँ तो बोलो।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And with the मोहब्बत पर आज 90s and early 2000 की बॉलीवुड की हिट जोड़ीज के बारे में बात की जा रही है, और जिनमें से एक ऋतिक रोशन एंड अमीषा पटेल की जोड़ी भी होती है। हालांकि ये जोड़ी वन फिल्म मंडरी बन के रह गई थी, लेकिन ये फिल्म जितना हिट हुई थी ना भाई, मतलब इनकी जितनी भी आगे की फिल्म एज ए जोड़ी फ्लॉप हुई थी ना, उसका भी भुगतान शायद कल होना उन्हें कर दिया होगा। लेकिन आपको पता है, इस फिल्म के लिए ऋतिक रोशन ने तो ऑफ कोर्स 3 से 4 महीनों तक डांस की और एक्टिंग की ट्रेनिंग ली थी, और उन्होंने अपने स्टंट्स भी खुद ही किए थे। वहीं अमीषा पटेल, उन्होंने तो भैया इस फिल्म को करने के लिए अपने कॉलेज को ही छोड़ दिया था, और जो स्टारडम शायद इन लोगों ने आगे जाके नहीं देखा, वो इस फिल्म ने एक बार और पहली बार में ही इन दोनों को दिखा दिया था। आई मीन, आई हैव नेवर सीन अ डेब्यू फिल्म गोइंग सच अ बिग हिट। ये तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिट थी यार। सैडली ये फिल्म करने के बाद जितनी बार भी प्रोड्यूसर्स ने इनके ऊपर पैसा लगाया और फिल्म बनाने की कोशिश करी जस्ट सो दैट दे कुड बैंक ऑन कहो ना प्यार है की हिट जोड़ी, ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन वो जो मोमेंट था जब कहो ना प्यार है में ये जोड़ी हिट हुई थी, वो मोमेंट आज भी सभी को याद है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अगर नंबर वन होने के मामले में डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी हिट थी, तो भाई करिश्मा कपूर और गोविंदा की जोड़ी भी कोई कम नहीं थी।
1: सारा जमाना ए सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिड डे मोहब्बत पर 90s और अर्ली 2000 की बॉलीवुड की हिट जोड़ीज के बारे में बात हो रही है भाई, जिनमें से बात तो खत्म ही नहीं हो सकती विदाउट टॉकिंग अबाउट गोविंदा एंड करिश्मा कपूर की ऑन स्क्रीन जोड़ी। ये इतनी श्योर शॉट कमाल हिट जोड़ी हो गई थी कि इस जोड़ी ने न जाने कितनी सारी बॉक्स ऑफिस हिट्स दी है, जिनमें से कूली नंबर वन, हीरो नंबर वन, साजन चले ससुराल, हसीना मान जाएगी, ये इन तरीके की फिल्में निकल निकल कर आई थी। इनफैक्ट इन दोनों की केमिस्ट्री की अगर बात की जाए ना, तो पर सबको पता था कि गोविंदा और करिश्मा कपूर बिना किसी रीटेक के लंबे लंबे डांस स्टेप्स एक ही टेक में कर लिया करते थे। इतनी अमेजिंग केमिस्ट्री थी इन दोनों की। एंड इस बात के तो डेविड धवन खुद गवा रहे हैं, और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये बात कही थी कि इन दोनों की ट्यूनिंग इतनी जबरदस्त है कि डायरेक्टर को बस एक्शन और कट बोलना होता है, बाकी सारा काम तो ये दोनों ही कर लेते हैं, विच इज सच अ रिलीफ फॉर अ डायरेक्टर। इनफैक्ट करिश्मा कपूर तो खुद भी मानती है कि गोविंदा उनके सबसे अच्छे ऑन स्क्रीन पार्टनर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 90s या अर्ली 2000 की कौन सी ऐसी फेवरेट जोड़ी है आपके दिल और दिमाग में, जो ऐसी छाई हुई है कि आप चाहते हो कि आज भी ये जोड़ी ऑन स्क्रीन नजर आए, तो वो कौन सी जोड़ी होगी? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सैफ अली खान और प्रीति जिंटा ने हालांकि ऑपोजिट ईच अदर बहुत सारी फिल्में नहीं करी हैं, लेकिन जितनी करी हैं वो काफी इम्पैक्टफुल थी फॉर देम टू बी इन द लिस्ट ऑफ 90s एंड अर्ली 2000 की बॉलीवुड की हिट जोड़ीज।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। सैफ अली खान एंड प्रीति जिंटा ने ऑन स्क्रीन स्पेस शेयर करी थी इन द फिल्म दिल चाहता है, लेकिन एट दैट टाइम प्रीति जिंटा वाज प्लेइंग अ रोल ऑपोजिट आमिर खान। एंड देन केम क्या कहना, जहां पर इन दोनों ने साथ में काम तो किया लेकिन स्टिल बाय द एंड ऑफ द फिल्म ये जोड़ी साथ में नहीं थी, चंद्रचूड़ सिंह आ गए थे बीच में। इनकी जोड़ी का साथ तो किस्मत ने तब दिया जब फाइनली कल हो ना हो में देवर ऑपोजिट ईच अदर। हालांकि स्टिल देयर वाज अ शाहरुख खान, मगर कहीं ना कहीं तो इनकी केमिस्ट्री भी इस फिल्म के अंदर थी, जिसकी वजह से फाइनली हमको इनकी फुल ऑन केमिस्ट्री की परफॉर्मेंस देखने को मिली इन द फिल्म सलाम नमस्ते। मुझे इनकी केमिस्ट्री इतनी प्यारी लगी थी ना इस फिल्म के अंदर, इतनी प्यारी लगी थी कि मैं तो दुआ कर रही थी यार कि और फिल्मों में काम करे, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं सैडली। और कल हो ना हो के सेट से एक बड़ा ही मजाकिया किस्सा है, जहां पर एक ऐसा सीन था जहां पर यू नो सैफ अली खान को एक लंबा हिंदी का डायलॉग बोलना था जो उन्हें याद ही नहीं हो रहा था। अब शाहरुख खान और प्रीति जिंटा साथ मिलकर सैफ अली खान की सेट पर चुटकी ले रहे थे, हंसी मजाक चुटकियां लेते लेते फाइनली वो वक्त भी आ गया जब सैफ अली खान ने उस सीन को ना बिल्कुल स्टाइलिश अंदाज में कर डाला और वो फिल्म का एक यादगार मोमेंट बन के रह गया था। वेल, अगर आज के टाइम पर आपकी किसी 90s या अर्ली 2000 की बॉलीवुड की ऐसी कोई जोड़ी है जिसको वापस से कास्ट करना चाहिए तो वो कौन सी जोड़ी होगी, डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। और अभी के लिए अगला गाना आ रहा, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बाजीगर फिल्म से कुमार सानू और अनु मलिक की आवाज में ये गाना कैसेट के साइड ए का तीसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: ये गाना नहीं था यार, ये तो जादू था। काउंटडाउन शो में जब ये गाना आता था ना, तो माय हार्ट यूज्ड टू स्किप अ बीट, बिकॉज़ इस गाने में कुछ तो ऐसी बात थी, है और हमेशा रहेगी यार। वो क्या है ना कि म्यूजिक इज थेरेपी, और इस गाने में आई थिंक, मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार अनु मलिक ने कुछ तो ऐसा दिमाग लगाया ही होगा कि इस गाने का जादू सबके दिलों पर चल जाए। और इस गाने की म्यूजिक के अलावा इस गाने में बेस्ट पार्ट वॉज शाहरुख खान। I just love that red jacket जो उन्होंने white shirt के साथ पहना हुआ था in the film, and he was looking so handsome यार। आज भी अगर कोई बंदा वो combo का कपड़ा पहन के आता है ना मेरे सामने, तो मेरे सामने शाहरुख खान ही आता है बॉस। And just in the name of शाहरुख खान, उस बंदे पर दिल भी आ सकता है। लेकिन इस गाने के लिरिक्स में एक बड़ी खास बात कही गई है कि उफ तेरी दिल लगी, दिल को जलाने लगी, दिल रुबा तू मुझे नखरे दिखाने लगी। ये सब लड़कियों के लिए बोल देती हूँ मैं कि देखो यार, जितने नखरे आप दिखाते हो ना, उतने ही लड़के आपके दीवाने होते चले जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे जितने भी गाय फ्रेंड्स है ना, उनसे कंफर्म करके ही मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि ये जो बात कही गई है ना, ये सही कही गई है। क्योंकि क्या है ना कि ये शायद ऊपर वाले ने नियम ही ऐसा बनाया कि लड़कियां जो है वो थोड़े नखरे दिखाएं और लड़के जो है वो उनके थोड़े नखरे उठाएं। अच्छा भी लगता है और मजा भी आता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए टू मच हो जाए ना, तो हर एक चीज का टू मच इज नॉट गुड बॉस। चलो जी, नाउ विद दिस इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप मुझसे मिल सकते हो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और अभी के लिए यही गाना वही अगला गाना है जो आपके लिए आ रहा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पुराने जमाने की बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस माला सिन्हा जी को गाने का बहुत शौक था। बिरजी सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने सिंगिंग पैशन के बारे में क्या शेयर किया था।
1: मुझे शुरू से ही गाने का शौक था। जब मैं छोटी थी तो खूब गाया करती थी, और वो गाने भी किसके, पिताजी के, आए गाने वाला, ये जिंदगी उसी की है, लाल दुपट्टा मलमल का, जितने उनके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और ईश्वर ने भी मुझे आवाज बहुत अच्छी दे रखी थी, तो मैं जब गाती थी तो सबको बोलते थे तो दूसरी छोटी बेबी लता गा रही है, तब डिटो नकल करती थी। तो इस तरह से एनकरेजमेंट मिलते मिलते फिर मैंने अपना टीचर मेरे डैडी ने रखा, तालीम ली। बोलते ना, इंसान सोचता है कुछ और होता है कुछ। तो जब मैं बॉम्बे आई एक्टिंग के लिए आई, गाना पीछे रह गया, एक्टिंग चल पड़ी।
0: वेल, आगे भी गाना है इन्हीं की फिल्म का, सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची। पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: एक्ट्रेस माला सिन्हा का बचपन कलकत्ता में गुजरा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और जब ये छोटी थी तो सिंगर बनना चाहती थी। सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: चाहा था इसलिए तो मैं गाती थी, टीचर रखा, फिर बाद में मुझे ऑफर गाने का तो नहीं एक्टिंग का मिला। 10-11 साल की थी तो चाइल्ड आर्टिस्ट का मुझे ऑफर मिला। डैडी के एक दोस्त प्रोड्यूसर थे अरविंदु मुखर्जी, हमारे पड़ोस में ही रहते थे, वो मुझे देखते थे गाना गाते, खेलते कूदते, कभी कभी हमारे स्कूल में जब प्रोग्राम होते थे तो वो एक पिक्चर बना रहे थे जोग बियोग। तो उन्होंने डैडी को कहा कि भाई आपकी बेटी मुझे बहुत टैलेंटेड लगती है, देखो सबके आगे गा रही है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स या डर कोई ऐसा भाव कुछ है ही नहीं, ये आर्टिस्ट है, मैं पिक्चर बना रहा हूँ, आई वॉन्ट हर टू कास्ट चाइल्ड आर्टिस्ट। तो डैडी ने कहा ठीक है, लेट अस सी कैसी लगती है ऑन द स्क्रीन। तो वहाँ से फिर मुझे एक्टिंग का चस्का पड़ गया।
0: यहीं से वो बंगाली फिल्मों में पहले चाइल्ड एक्टर बनी, फिर उन्हीं फिल्मों में लीड एक्ट्रेस बनी और फिर बॉम्बे आई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: भाई एक्ट्रेस माला सिन्हा जब छोटी थी तो उनके एक अंकल जो कि डायरेक्टर भी थे उन्होंने उनको एक फिल्म ऑफर की एज अ चाइल्ड एक्टर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन तब उनकी पढ़ाई भी चल रही थी, सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: पढ़ाई भी चल रही थी और हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, पहले तो अब डैडी डर गए एक्टिंग करने के लिए छुट्टियां भी मिलेगी कि नहीं, ऑब्जेक्शन ले, अरे भाई एक्ट्रेस एक्ट्रेस हमारे स्कूल में नहीं पढ़ने का। पर शी वाज सो एनकरेजिंग, मिस दास था उनका नाम, तो उन्होंने कहा अरे ये तो अच्छी बात है, इफ शी इज टैलेंटेड, उनमें टैलेंट है तो उसको तो एक्सप्लॉइट होना ही चाहिए, उसको आगे बढ़ना ही चाहिए। तो हम इनका जो नोट्स है ना, हम उनकी सहेली से जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनसे नोट्स करवा लेंगे, जिस जिस दिन वो नहीं आएंगी मिस करेंगी तो लेटर गो अहेड। तो उन्होंने भी इनकरेज किया, बोले कि टैलेंट को दबाना नहीं चाहिए। तब उनको पता नहीं था कि मैं एक्टिंग कर ले, तो बाद में वो तो अचंभा रह गए, बोले शी कैन एक्ट ऑल्सो। तो डैडी ने कहा हम जरा देख रहे हैं फ्रेंड का चेयर है तो शौकिया कर रहे हैं, तो शी ऑल्सो इनकरेज। इस तरह से मुझे डैडी से, मेरा प्रिंसिपल से, प्रोड्यूसर अंकल से एनकरेज मिला तो फिर आगे बढ़ती गई।
0: Well, ये कितनी प्रोग्रेसिव बात है। एंड लेट मी रिमाइंड यू, ये मिड 40s की बात है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन

0: मिड 50s तक माला सिन्हा बंगाल की एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस बन चुकी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन कलकत्ता से बॉम्बे में उनकी एंट्री कैसे हुई, सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मुझे यहाँ बॉम्बे में ऑफर मिला, वो भी कैसे, फिल्म फेयर में। फिल्म फेयर भी नई थी, आई थी मार्केट में, तो उसमें मेरा एक फोटो छप गया। तो अमिया चक्रवर्ती जी जिन्होंने दाग बनाई थी, सीमा बनाई थी, कठपुतली बनाई थी, उन्होंने फिर मुझे साइन किया साइड हीरोइन, क्योंकि देखने में हीरोइन लगती थी ना, साइड साइड के लिए ठीक थी, छोटी छोटी पतली पतली लड़की चुलबुली से। तो उसका उस बादशाह में उन्होंने मुझे प्रदीप जी के, प्रदीप कुमार अगेंस्ट में प्रिंसेस का, और वो प्रिंस ये प्रिंसेस को पसंद नहीं करते, वो तो वो होता है ना बंजारा गर्ल, अपना उषा किरण जी हीरोइन बंजारन थी, मैं प्रिंसेस। तो उसी पिक्चर से मुझे बॉम्बे में आने का मौका मिला।
0: वेल, इस फिल्म का नाम था बादशाह। इसके बाद मिड 50s में उनकी कुछ हिंदी फिल्में और आईं, लेकिन जो फिल्म उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई वो थी 1957 की प्यासा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

किशोर कुमार और आशा भोसले ने साथ में कुछ 600 गाने गाए होंगे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और कई गानों में उनको रिकॉर्डिंग करने में बहुत दिक्कत आती थी, पता है क्यों? क्योंकि किशोर कुमार इतने शरारती थे, इतना मजाक करते थे कि आशा भोसले की हंसी नहीं रुकती थी और रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती थी। किसी फन सॉन्ग में किशोर कुमार जमीन पे लोटपोट हो जाते थे, उठते ही नहीं थे, और आशा भोसले हंसती रह जाती थी और गाना ही रिकॉर्ड नहीं हो पाता था। ऐसी बातें आशा भोसले जी ने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में शेयर की हैं। हाय, कितने मजेदार होते होंगे वो रिकॉर्डिंग सेशंस। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
3: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

देवानंद साहब के फादर एक लॉयर थे, उसी के साथ साथ फ्रीडम फाइटर और स्कॉलर भी थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, बहुत सारी लैंग्वेजेस उनको आती थी, बहुत सारे वर्ल्ड रिलीजन्स के बारे में वो जानते थे, और इसीलिए कहीं ना कहीं देवानंद साहब का इंक्लिनेशन भी पहले पढ़ाई की तरफ था। देवानंद साहब ने डलहौजी से अपनी स्कूलिंग की, फिर धर्मशाला में भी पढ़ाई की। ये सब जगहें तब पंजाब प्रांत में आती थी, पार्टीशन से पहले की बात है। फिर इंग्लिश में बीए किया और वो एमए भी करना चाहते थे, लेकिन उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई उनके फादर तब अफोर्ड नहीं कर पाए। एंड उसी दौरान देवानंद साहब रियलाइज्ड कि कहीं ना कहीं उनका ये जो छोटा सा सपना एक्टर बनने का चल रहा था, उसको पूरा करने का वक्त आ गया है। बस उन्होंने ट्रेन पकड़ी और बॉम्बे आ गए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: It's hot.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आपको पता है शम्मी कपूर साहब के गानों के लिए यूजुअली कोई कोरियोग्राफर नहीं होता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और अगर होता भी था तो उनको वैसी कोरियोग्राफी करनी पड़ती थी जैसे शम्मी कपूर साहब का यूनिक स्टाइल था। और तो और ये कई बार अपने कपड़ों की स्टाइलिंग भी खुद ही करते थे। सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: Hong Kong, Japan, Tokyo. I mean, I used to go to these places, I used to pick up clothes. I was in London, I used to pick up clothes. I went to Paris, Berlin. All the clothes that you saw in my movies in those days were my clothes. I had bought them for myself. I used to dress up specially. Even that jacket in Jungle is mine. So, I had an eye for that.
0: Well, that style, that swag, that energy, that aura, that charm. शम्मी कपूर साहब, ओए होए, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो।

हमें जिनसे इश्क है उन्हें हमसे इश्क नहीं, उन्हें जिससे इश्क है उसे उनसे इश्क नहीं। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये गाना हमने जो सुना ये थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का है, सुलक्षणा पंडित एंड अनवर की आवाज में। सुलक्षणा जी बहुत अच्छी सिंगर थी, एक्ट्रेस थी, एंड शी वॉज मैडली इन लव विद संजीव कुमार। सोचिए कितना प्यार होगा। दोनों की डेथ डेट सेम ही रही, 6 नवंबर। संजीव कुमार जी 1985 में गुजर गए थे, एंड आफ्टर दैट सुलक्षणा पंडित बेजार हो गई थी काम से, तब से उन्होंने काम अपना कम कर दिया था बहुत। और संजीव कुमार ने उनका प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपने हेल्थ के बारे में वाकिफ थे कि उनकी हेल्थ बिगड़ सकती है। ऑल्सो वो कहीं ना कहीं हेमा मालिनी के प्यार से गेट ओवर नहीं कर पाए। हेमा मालिनी ने उनका प्रपोजल रिजेक्ट किया था ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और ये गाना सुनेंगे अगेन सुलक्षणा पंडित एंड किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम दूर कराही। सुनते रहिए मिर्ची

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद जारू ओनली ऑन

कैफी आजमी साहब के लिखी हुई गजल। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और मुझे ना उनकी कुछ और लाइंस बहुत अच्छी लगती हैं, आई थिंक मैंने पहले भी शेयर की हैं, कि शोर यूं ही ना परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा। बिजली के तार पे बैठा हुआ हंसता पंछी सोचता है कि वो जंगल तो पराया होगा। अपने जंगल से जो घबरा के उड़े थे प्यासे, हर शराब, शराब मतलब रेगिस्तान में वो रेत जो पानी के जैसे दिखती है दूर से। अपने जंगल से जो घबरा के उड़े थे प्यासे, हर शराब उनको समुंदर नजर आया होगा। कैफी आजमी साहब का लिखा हुआ एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग यहाँ सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

आपको पता है 1980 की फिल्म कर्ज एक हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये मूवी है 1975 की, द री इनकारनेशन ऑफ पीटर प्राउड। मैंने यूट्यूब पे जाके मूवी देखी, काफी बोरिंग और पका हुआ है, लेकिन मूवी देखते देखते कमेंट्स में मुझे पता चला कि इसी नाम की एक नॉवल भी पब्लिश हुई थी 1973 में। तो ये अमेरिकन मूवी उसकी अडेप्टेशन है। कहां से क्या लिया गया है, क्या कहां से क्या इंस्पायर हुआ है, क्या पता है? ऐसा ही है, जीवन में जितना कर्ज उतारते जाओ और चढ़ता जाता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शंकर जयकिशन की जोड़ी के जयकिशन साहब बहुत ही फन लविंग, पार्टी लविंग, फ्लैम्बॉयंट किस्म के इंसान थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उन्हें खाने पीने का बहुत शौक था, खास करके पीने का। वो बहुत ड्रिंक करते थे और इसी वजह से, एक्सेसिव ड्रिंकिंग की वजह से उन्हें लिवर की बीमारी हो गई और बहुत ही कम उम्र में, ही वॉज जस्ट 41 ईयर ओल्ड, उनकी डेथ हो गई। ऐसा भी कहा जाता है कि मिड 60s में शंकर जयकिशन के बीच में जो डिफरेंसेस आए, उनकी दोस्ती में जो दरार आई, उससे भी वो बहुत हर्ट हो गए और ज्यादा ड्रिंक करने लगे। ये भी तो होता है ना यार, जिन रिश्तों में गहराई होती है चोट भी वहीं गहरी लगती है। 1971 में जयकिशन साहब की डेथ ने शंकर साहब को तोड़ दिया। वो म्यूजिक बनाते थे लेकिन उनका मन नहीं लगता था। जयकिशन साहब की डेथ के बाद जितने भी गाने उनके रिलीज हुए उसमें म्यूजिक कंपोजर नाम शंकर जयकिशन ही जाता था। वो एक ऐसी जोड़ी थी कि उनके डिफरेंसेस ने उनको अलग करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए।

0: सत्ते पे सत्ता फिल्म में वो जो सीन है ना, जो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा हार्ट ब्रेकिंग भी है।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो सीन जिसमें अमजद खान अमिताभ बच्चन को ड्रंक कर देते हैं उनसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए और फिर बाद में उनको किडनैप कर लेते हैं, हाय बड़ा दुख होता है। हाँ, कमिंग बैक टू द सीन, तो वो सीन जिस घर में शूट हुआ है ना, वो जो घर दिखाया गया है, इट इज द सेम हाउस जो अमिताभ बच्चन साहब का घर है जलसा। और सत्ते पे सत्ता फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी तभी इस घर को खरीदा गया था, बच्चन जी ने खरीदा था सिप्पी साहब से ये घर, एनसी सिप्पी जो फिल्म मेकर सिप्पी फैमिली है उनसे। और ये भी सुनने में आता है कि इस फिल्म की जो अमिताभ बच्चन की फीस थी उसको उस घर के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया गया था कि आप फिल्म में काम कर लो और घर ले लो और आप हमसे यहाँ पे ब्रेक ले लो। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: गली गली में शोर है, प्रीतम दा चोर है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नहीं नहीं, इससे पहले कि आप मुझे जज करें, ये बात मैं नहीं, ये तो पूरी की पूरी इंटरनेट कर रही है, क्योंकि एक बार फिर से प्रीतम दा इज बीइंग ट्रोल्ड। क्योंकि भाई उनका एक और गाना लोगों ने पकड़ लिया है कि अरे ये तो कहीं देखेला लगता है, बोले तो सुनेला लगता है यार। सो बेसिकली कॉकटेल 2 इज दिस अपकमिंग फिल्म जिसमें शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदाना लीड रोल निभाते नजर आ रहे हैं। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं होमी अदाजानिया एंड इस फिल्म के कुछ गाने रिलीज हुए हैं रिसेंटली, जिसमें से एक है माशूका। और भाई इस गाने ने लोगों को याद दिलाई है एक इटालियन कॉमेडी गाने की। अब उसके ऊपर अलग अलग मीम्स शेयर किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिसपे रिस्पॉन्ड करते हुए प्रीतम दा ने अपनी स्टोरी पे बवाल मचा दिया। उन्होंने कहा है कि भाई आपको जितना भी कहना है कहो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मतलब द कॉन्टेक्स्ट वॉज दिस कि हाँ आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने चोरी कर लिया है ये वो। तो ठीक है, वो कहते हैं ना डिलुलू इज द सलूलू, तो अगर प्रीतम दा को यही सच लग रहा है तो वो उस पर विश्वास करें, और ऑडियंस को अगर उनका सच सही लग रहा है तो उनको अपने हिसाब से जीने देते हैं। वैसे नॉट टू मेंशन द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 19th ऑफ जून और इसका ट्रेलर आने वाला है 29th ऑफ मे को। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
3: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: डांस बसंती।
1: यार अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। हाइला, वरुण धवन का बॉलीवुड डेब्यू होने वाला है। नहीं, इस चीज की कॉन्फर्मेशन अभी तक नहीं आई है, बट एक्चुअली द रिपोर्ट सजेस्ट कि अमेरिकन डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर लॉरेंस कैसनॉफ के साथ उनकी ये बातचीत चल रही है फॉर दिस पैरेलल यूनिवर्स एक्शन फिल्म विच इज करेंटली अंडर टॉक्स। वेल, इस चीज को लेकर प्रॉपर रेवोल्यूशन जैसे ही होगी डेफिनेटली मैं ही बताऊंगी ना आपको, और कौन ही बताएगा। सौरभ गांगुली की बायोपिक की बात करना चाहती हूँ जिसका नाम होने वाला है दादा, और इस बायोपिक में राजकुमार राव एज सौरभ गांगुली नजर आने वाले हैं। वेल, इस स्टारकास्ट को ज्वाइन किया है रिनाउंड बंगाली एक्टर शाश्वत चैटर्जी ने। फिलहाल मुंबई में इस फिल्म की शूटिंग चल रही है एंड देन द टीम विल मूव टू कोलकाता, बट नॉट टू मेंशन फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं विक्रमादित्य मोटवानी एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड स्पोर्ट्स बायोपिक्स करंटली अंडर प्रोसेस। एक और बायोपिक की बात कर लेते हैं जिसमें आर माधवन नजर आने वाले हैं। हाँ जी, और इस फिल्म का एक नया पोस्टर आउट किया गया है। द नेम इज GDN, जो बेस्ड है विजनरी इन्वेंटर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट गोपाल स्वामी दुराई स्वामी नायडू पे, हु वाज वाइडली नोन एज एडिसन ऑफ इंडिया एज वेल। मूवी रिलीज होने वाली है 17th of July को, और ये 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में आएगी, दैट इज तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा एंड हिंदी। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot.

Mirchi. It's hot. Mirchi. It's hot.